0: पोकर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, शुद्ध नमक देना। शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम रेपुरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है।
1: तो ऐसा बोलो ना,
0: वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान।
2: ये हुई ना बात।
3: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध की बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण।
4: வரும் வெள்ளிக்கிழமை இரவு 8 மணிக்கு விவத் பாரதி தமிழ் பண்பலை 102.3 இசையும் நானும் நிகழ்ச்சி. சில குரல்கள் காதுகளுக்குள் மட்டும் கேட்பதில்லை, காலம் கடந்தும் நம் மனதுக்குள் ஒலித்து கொண்டே இருக்கும். அப்படிப்பட்ட இனிய குரலின் இசை பயணம் பாடகர் அனந்து அவர்களுடன்.

0: तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी। शुद्ध नमक देना, शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम रेपुरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है।
1: तो ऐसा बोलो ना,
0: वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान। ये हुई ना बात।
2: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध की बच्चे भी जानते हैं इसके।